आमिन, हमारा ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा था। अब अपने मेजबान इमरान ओपल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: फ्रांस में आज होने वाले फ़िलिस्तीन के हक़ में एक बड़े यकजहती मुजाहरे पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। अर्जेंस फ़िलिस्तीन नामी तंजीम की कॉल पर पेरिस में होने वाले इस मार्च, जिसका मकसद गजा में जारी नस्ल कुशी की तरफ तवज्जो मबजूल कराना था, पेरिस पुलिस हेडक्वार्टर्स ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखला लॉरेन नुनेस की हिदायत पर लिए गए इस पाबंदी के फैसले में यह दावा किया गया है कि दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात और एंटी सेमेटिक कार्रवाइयों में इजाफे की वजह से यह मुजाहिरा अवामी नज़्म व ज़ब्त के लिए शदीद खतरात का बाइस बन सकता है। फ्रांसीसी हुकूमत के इस फैसले पर बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तनजीमों की जानिब से शदीद रद्द अमल और तनकीद देखने में आई है। गज़ा पर इसराइल के हमलों को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और नुकसानात की तफसीलात मुसलसल संगीन होती जा रही हैं। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक खत्ते में जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक होने वाले हमलों में 1460 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2023 से अब तक मजमूई जानी नुकसान 74,200 से तजावज़ कर चुका है।
2: फ्रांस के रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट रीमा हसन ने स्टार्सबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर एक इसराइली झंडा हटा दिया।